सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों

papi. Edition karo. Kipagwat for satira. Api for sanailia. To kapleng. Pap ko remate. Pachoka. Tok. Ashantika. Vayu mandal dekar. Aur pap. Aur aap. Jante ho. Ki ye to ati me janai. Bina ati ke. इसी समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये पाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी, तो प्रभा कुमारियों

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: धरनी पर बैठ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

रोटी भी नहीं मिली तो भी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yep.

Peace.

और इस संघ के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे देव ऊंचे वैसे आप

Oh.

रंग से।

Smoke.

0: mão, quero ver me. A tua pipa vetra bandi. Or a tua que sad. Sharir pipa vetra banda.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Comme ça.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद एक मिनट

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

independent.

सर्वशक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है, खजाना है सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। Baby.

0: sopin nimet paneviin. Onko askel kivaju mandal varmaan? Suem to santustre näin. Leken santust karnami. Santosh taka vayu mandal me parpao nahi kyon ka aajkal santosh ta sab ko chahiye. इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस हो के कर लेती है, लेकिन उन्हों को भी कुछ सिक्या कुछ किमिया कुछ उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। से सिक्या भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो, सिर्फ सिक्या से अभी सभी शिक्षक बन गए हैं। इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल सने दोनों का बैलेंस रख करके देना। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियाँ चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई और मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए, उसमें रिजल्ट आती रहे। ne. Don Geopard, să ne iese. Să ioc de napăringă. Ioc să me divărtase. Să me pară. Essa qui plan bano koi na koi work interest ka nikal ke sab ko pisi rakho usme
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी?
2: ठीक है, तो
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है, अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सुखम में उनों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़ा, कर लिया। लेकिन चैन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाती है, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। सुस्ता से सुना के कदम एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Come on. समझ तो है, एक सेकंड में भी नहीं बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना थे इसे न्याना हो गया तो देख के साथ ही सुबह हो संस्कार कमजोरियां सब देख के साथ और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय बने। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे यहाँ रहे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

divertido.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

Ciao.

शेर के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रेल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले

विभाग दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक

क्यों कब

0: चलते चलते माया अलबेला और आलस रायल आलस ये रायल आलस अलबेलापन
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचना कहते हैं, किचना दे दो बस, अच्छी चीज नहीं तो किचना दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचना है ना, किचना कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बता दे तो यही है ना, क्या करे। परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति कन्ना में नहीं होने वाली, स्वस्थिति शक्तिशाली। समापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे, फरिश्ते चमक रहे, सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है, चला रही है पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, बना हुआ प्लान देते है ना तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपने हिम्मत से बनाओ, चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आती कभी बौनी परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, विजय बना दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।
4: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

0: भी होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ बोल व्यर्थ संबंध संपर्क योग व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संघ वैसा रंग लग जाता। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संघ नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? फेंकेगा क्या? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। बाप दादा को बच्चों के बिना बिना खेल देखा सी भी आती है, रैम भी आता है, और बाप दादा उस समय टच करता है ये भी अनुभव करती है। नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत नहीं है, ये बाबा का समान बनना नहीं है, टच भी होता है, लेकिन अलबेलापन सुला देता है। इसलिए आप भी स्वर्ग के प्रति ज्यादा खजाने खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवा भले करो व्यर्थ खर्च नहीं करो, बहुत जमा करना है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah. दर्शन से भी ज्यादा।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो। रियल ज्ञान का प्रभाव डालने, कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप के तरफ आकर्षित, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मजबूत हो गई हो ना।

सुनते रहिए शिवा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय होती हूँ चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होगा। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहा एक नंबर और कहा 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं। या तो आप सबको राज भी करना है, तो किस जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक तो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे कोई समस्या आई तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान है तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य

समय अब आप सब

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Son.

समझते हो, पहली लाइन तो लेना राइट है, राइट राइट है मधुबन वाले, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए।

Nossa!

Jesus, what a mistake.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सक्सेसफुल कभी भी जो नहीं होते उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुनाओ, अधिकार है पक्का है, तो अधिकार प्राप्त होने में अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजर रेड्डी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते, पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन चित नहीं, लेकिन पर्सन होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाते। होती विजय ये आपका स्लोगन है, दस वर्ष वालों का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए? पर्सन चित या पर्सन चित? माया अपन नहीं कमजोर संकल्प की चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय ही है इससे समाप्त करो, फसोटिल लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त करने की, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल। विच है मेरा बर्थ राइट, सफलता मेरा बर्थ राइट। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, क्या पहाड़ से माथा टकराना है? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेल की दुनिया, झमेले तो आएंगे। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए, सेंटर खरीदे? झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है, कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो लोगों को उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते, ऐसा किताब निकालो और अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चों का बाप दादा माना के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमटंस अनुसार
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए वरिटी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मा की स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की चाहे शांति की चाहे परमात्म प्यार की कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलो और वाणी साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो मनसा आत्मा की स्थिति द्वारा के समय आपके बोल आपके मस्तक से नैनों से सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहती है बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप के अनुभूति का भी वर्णन करे। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने, जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकती है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। क्या प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते? ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए तब समापति के समय को समापत कर अपना राज लाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई फिल्ला महारती भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से, क्या है सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है पीछे, अभी महारथी जब बदलेंगे ना हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। अच्छा, नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराऊं। श्रम खुद किया, वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा। तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम एजेंट्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है।
2: बेफिक्र
1: ऐसी बेफिक्र हो, बेफिक्र होके टूटने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होगे निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होगे निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ। हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच, ये याद रखना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन सभी के दिल में छोड़ना है और क्या बनना।

0: कुछ पढ़ने का।
1: तीवर पुरुषार्थ का।

सब जानते हैं। Yeah.

course.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर सहयोगी बनाए है, उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

course.

Yes.

Sigh.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: समय के समिता परमान वरदानों को हर समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर, मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने से कम छे मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के just कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेंगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं, कृति कला की बाजी, बहाने बाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। और ठीक कला की बाजी, ठीक है ना, सबके चेहरे तो गिर गए जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे। तब भी फोटो निकालेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Psst.

Flores.

この国士が安保がね、ホスだよな、ホスだよ国士、キフシスだよ。Yeah.

0: pussy bundle. Double feather. आप कीवी बनेगी. उनकी भी.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो. यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा बाप के कंबाइंड रहना पड़ेगा, कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बच्चा बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो, कई बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता, और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो, लेना तो आता है, देना भी सीखो, तो क्या करेंगे। देना सीखा है, बाप दादा आया ही किस लिए। बच्चों का बोझ लेने के लिए, कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है। वो हाथ उठाओ, हिम्मत रखे हाथ, शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का हाथ उठा रहे हो। मन का हाथ उठाना, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अभी से

0: Mercedo, que prema comaria, croto molto panati. Chioque, croto se molto nasocete.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके पांडव जो गए उनका भी यही दिल में संकल्प रहा कि हमें जो पांडव पांडव को विजयी कहा जाता है, तो पांडव का लक्षण और है रामी और है भी कि जो गायन है विजयी पांडव पांडव को क्या याद आते विजय चाहे अग्नि सेना थी तो भी पांडव शब्द कहने से विजय याद आते। पांच पांडव लेकिन विजय कैसा भी वायुमंडल सेना का वायुमंडल था लेकिन पांडव पांडव पति के श्रीमत से विजयी बने और विजय का नाम पाला किया। अभी वही पांडव विजयी बन औरों को भी विजय दिलाने वाले पांडवों को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। किस बात में खुश होते हैं? Is

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

परिवार के सदस्य

0: स्लर्पनो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से रुका हुआ भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है। इसलिए अपने अब एक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार योग द्वारा ही

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Let's see.

Tiens.

Isso é aqui, pô.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे क्या से क्या बना देते।

Chappie.

Cassandra. Cassandra.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस

0: के आधार से स्पीकर बनाने चाहते हैं। आप जो भाषण करो उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुनाए तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक। पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मांड कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए, अचानक ही हुए ना। सोचा था कि इस तारीख को भ्रमण बनेंगे, सोचा था, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे। अभी जमा कर लो जितने चाहिए, जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चे भी एकाग्रता के स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव

есть ты. Чай.

किसको नहीं प्राप्त होता।

Sorry.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा के लिए नहीं कर, दवाई खाएंगे बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मालिक सदा मालिक होता है।
3: कितने वर्षों से जुड़ा
2: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
3: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
2: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

समय पर समय।

0: रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पण साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Da. Dr. Nashine. Yakabi. Mati me bhi aa jate. मट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मट्टी में तो नहीं चले जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ
4: see.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Summer.

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: था कौन नहीं जैसा मैं थकाट फील होना, तो कहां भी जाके डांस शुरू कर दो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफल सफलता का आकाश में ये विशेष समृद्धि में इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो के सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से नशे से रुआने नशे से आप माने नशा नहीं रुआने नशे से उड़ते चलो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी लिफ्ट बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लिफ्ट बन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

假装费老，假把给不给的，说的给想的，说的给给来，阿爸那卡的，给的那罗布斯。Fell asleep.

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ, जैसे

sit up. Aap master gyan suniye. Bachchon dwara.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: personal to your reality. कितने ऊंची है, अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती, तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल बड़ी है, दिखाई देती है। और पाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो, जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष पाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। परम भी आप समीप है बाप के, और फिर आद सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रियलिटी कितनी ऊंची है। सारे
1: just so
0: पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। रॉयल्टी है ना आपकी, फिर अंत में संगम युग में भी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संग

नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माए हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प

0: भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jay.

विजयी बच्चों को स्थान है। ये

0: बनेंगे, कौन बनेगा? अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। Sabana

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sra.

जो भी संबंध में आए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक मत होके चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं व्यर्थ नहीं चलता। चलाना है जैसे बाप दादा ने, अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60 अच्छा 100 भी समझो ज्यादा में ज्यादा इतने नहीं है।

0: सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट कॉपी अपना प्यारा कह के चले और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है उन्हों को भी लाडले कहते नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे पाँव से चलाते क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है ये रिजल्ट है संस्कार बिना बिना होते होना है नहीं तो सब राजा बन जाए प्रजा कौन बनेगा राज किस पर करेंगे अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना रॉयल प्रजा राजधानी है ऐसे हर एक अपने को चेक करे परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है लेकिन मेरा संस्कार क्या अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया जो अच्छे को भी बदल लेता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो खुश रहते हो इसकी मोबाइल।

0: 5G.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सहज चमक।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को संकल्प चलते हैं। राष्ट्रगति है न संकल्प की, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समृद्ध रहे, कितने साधारण रहे। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास, जो पीते वो
2: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते है ना। आप विश्व में Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है।

So

Nimmt.

Sempre.

Thank you.

Yeah.

परिवार के प्यार।

Yeah.

三个米修和杯，安保哥。

एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। बच्चे

de Deus.

0: నిగాత్మకు.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जैसे वाचा से

0: Let's see.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

क्या मत

विश्वं सेवतारि समान कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि कार्य

नहीं होंगे, पढ़ेंगे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सकते आती, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो थोड़ा टाइम के बाद आती है, बात पूरी हो जाती है फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी करते हो।

0: सर्वशक्तिवान बने। तो इतनी पावरफुल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Skill.

कुछ हो नहीं। इसलिए पाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा इस फरश की

0: Sada, Bob Saman, Bonanaye.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

मित करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो, अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण, लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर ठीक कैसे होगी? इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहो, और ये डबल प्रालंबोध बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे, आपको क्या जिम्मेवारता दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते लौकिक काम करके तक के आते हैं, क्या करें? नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ, कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादियों या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते? वाद राम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ, उठाओ हाथ। अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, पांडव पीछे बैठे, अच्छा है। आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करता।

0: इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजो आप एक एक के पीछे विश्व के आत्माओं का आधार। सोचो अगर आप अलचल में आएंगे, विश्व के आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाई जाती है ना, उनके पीछे विश्व का आधार है। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार है। जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार और शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंद गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्मांड जीवन दी, तो ब्रह्मांड जीवन का आप सबका वायदा क्या है?
2: परेशान रहता है।
1: मेरा मन आया कहां से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से? आप सभी तो Sunday.

0: के में लगाएंगे उतना ही खसाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ, सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय पर मार कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Essa prestação.

0: साकार नहीं होना थे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन Oh.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Hello।

一部车子，那是哪个的？这个的，我家耍的多，而且跟你们的人不的，而故事呢，故事比你也是拉不的，这个。Okay.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Ese.

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तो स्मृति समृद्धि दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समृद्ध स्वरूप है,
1: see.

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में एक सत्य

にそっとし

Και νίκη αυτή μοιόπιτα τη.

问你，干那是不干那？我家里没那个，我为什么没得过？आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करती है, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है उसको जमा करो, खाली नहीं रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी

Cosa

Snake.

जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवा रेडी। दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद।

0: about nothing. Talk again of the neighbors. Shop about nothing. It talk is a yogi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृत्त ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी ही कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो देश आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या भर रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता करने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है। कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना, जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिने का। सेकंड भी निकालो, साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा? समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो सर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही

जाते हैं।
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर सीट रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, या ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है, जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाती है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति, छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, आप वान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे देख रहे। कोई भी बात आवे और ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी हो ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे

बच्चों के मन में खुशी

起来，把头发没安呐，而他不下人没阿给卡的巴拉Madhuban

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। 101.3

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार।

सब करते हैं। योगी तो आत्मा है तो सभी है, ज्ञानी आत्मा है भी सभी है, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य

जो भी मधुबन में आ

Nee,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

假的。

down.

Tiens.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sra.

बच्चे धर्मराज के पाठ

Sangat.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे बने कहाँ से बने, स्वयं सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपन ने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा ऐसा कोई बन सकता है तो आप उनको ये पार्थक्य में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल परमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने जाते। चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प क्या हुआ?

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सकता है। अच्छा फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत खेल देख चुके हैं, मीठे मीठे खेल, और

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से बीच बीच में अलबेलापन आ जाता, हो जाएंगे बन जाएंगे। क्या करेंगे?

0: Attention.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, तब अपना बनाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा, को पता है हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है, कौन तैयार है अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का स्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो। और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।